0: चला रहा था। बड़ी बड़ी बच्चियों में
1: खादो एक सारा मुफ्त में सुना है। मत देख उसको।